खुदल दमजरी पैसे यसी मनालई फिल्म सिदकी मंदाकिनी तकेलमम की नाइतम खुंजेलदा मुही बुलान सेरेंगबमदि नाउरेम जितेन कुमारना सैरंगबा इसेनी

गुड मॉर्निंग मणिपुर की थोरम ताबिरी अदोम थोरम ताबिरी बसी एफएम मेगाहर्ट्ज सामोहम दशमिक मंगार संदुक चरीबा आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल ने हौजिक मुंफम असीद अमुक पुदुना लाक्चरी सैसकप अमगी खोंजेलदा मणिपुरी फिल्म सैसिंग नसीगे लोखो चरीबा सैसकप रणबीर थोमा खुदोल गे अहान मद लोखो चरी थाजबगी वांग मद फिल्म सिदगी सैसक पसी की खोंचल दा जी कविता न सैरंग ओके नमक चम न सैरंग मखोल दी थोक दा हाई करे इसे खुदोल तम जरी पुन तामीन सी

0: गीत खुदोल गया हम सुबह लोग चरी बसी पंकज उदास की खुंचिलता गीत मा तमिलसी
1: और आहिस्ता कीजिए बातें

गीत खुदल गी अरोय बिदलो कुचरी बा सैसक पसिंग आशा भोसले एमदी जगजीत सिंह खुदल दमचरी थमिनसी।

धन्यवाद आदित्य। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से। श्रोताओं, आज सोमवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं गाने नए पुराने। तो सुनते हैं ये पहला गीत, फिल्म का नाम है मैं रहूं या ना रहूं। आवाज़ दिया है अमाल मलिक ने, शब्द रचना रश्मि विराग के हैं और सुरों से पिरोया है अरमान मलिक ने।

दूसरा गाना प्रस्तुत है शोर फिल्म से, आवाज दिया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, बोल संतोष आनंद के हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

तीसरा गाना पेश है कुछ ना कहो फिल्म से, आवाज दिया है साधना सरगम और शान ने, शब्द रचना जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लोई ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम गाने नए पुराने, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं गाइड फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में एक गीत। गीतकार है शैलेंद्र और संगीतकार है SD बर्मन।

कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर पेश है क्यों हो गया ना फिल्म से एक गीत, आवाज दिया है साधना सरगम और उदित नारायण ने। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लोई।

आज के गीतमाला कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

गीत माला की थरम ताबिरी अदम न थरम ताबिरी बसे आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंगफम सिदा अमुक लानथोकचरी अरीब मणिपुर फममदि मतमिसे खुदोल गि अहन बद तामिनसे माधवी फममसिदगी उषा मंगेशकर गि खोंजलदा एल बंक शर्मा न सैरेंगबा सगोसेम तिजेंद्रना सैरांग बैसे

0: 파우노 우벙감바 더랑싱 빨칼라카니 하이브기 타즈블레이 아마롬다 양카이 마픈 수바 마운틴 브리게드 기 커만더 VSM 브리게디어 사친 S 마하딕나 मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी ते लाक्तुना दुरन कपलिसंगनी कुंतरुकी बर्टन टावरक्रे सोशल मीडिया थागत पवार वलम द मुख्यमंत्री ने हाय साउथोक चनिंगाय ओबे मेकअप हायबदु अमुक हन लाकले इंफाल गी कुमलम पाकता दुरन कपलिसंगनी कुंतरुक को होस ओइदुना पांगथोक लगनी मसिना राज्य सिगी सानोखनबगी लमद हेनो कुमांग यांगशी लगनी भारत की ख्वाहिदी की चाऊबा मालियम की ओर टेक्सटाइल्स इवेंट भारत टेक्सटाइल सिंगनी कुंतरुक हयेंगदगी नई दिल्ली की भारत मंडपम द हुरगने नुमित मरी नि सथगदब इवेंट असिद भारत ना मालियम की थाकता टेक्सटाइल्स फैशन सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेस्टमेंट मसुंग इंटरनेशनल ट्रेड मंगजिल थारिब सिंग दु उठोकने थोरम असिद मालियम की तोंगान तोंगान मफम दगी मियोसिंग खुसा हाइब मियोसिंग इन्वेस्टर्स पॉलिसी मेकर्स ग्लोबल बायर ने चिंग बसिंग सर यागने नई दिल्ली द पाउमिशिंग द भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन की चेयरमैन नरेन गोयनका ने हाय भारत टैक्स की अहम सुब एडिशन असिद ललोन ब म्योय लाख अम लिशिंग कुंथ्रा हेना अमसुंग पोट लेब म्योय लिशिंग तरेट हेना अमसुंग पोथोक सिंग उत्प एग्जिबिटर लिशिंग कुन हेना सर यारब याई तोंगा तोंगान बले बाक्तरा मरी दगी इंटरनेशनल एग्जिबिटर सिंग इवेंट असिद सर यागदौरी बेनाम की हु कोई थत्ता ही लाप की थकदोकता लेखिदब भारत मजात्रा मंगागी असीब हकचांग ngasi निमिदांग भारत यरोक लगनी बेनाम दलेबा भारत एम्बेसी ना सोशल मीडिया थगत पवार वलम द हाय ngasi निमिदांग वेरम पुंग तरुकता हो चिन मिन शहर दगी असीब हकचांग तरा मंगा दु फ्लाइट पुरकतुना निमिदांग पुंग मपल मखाय खरे हेनबदा मुंबई गी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट यरोक लगनी एयरपोर्ट गी इमुंग मनुंग गी म्युई सिंग असीब हकचांग सिंग दु मसा मसा गी युमद पुखिगनी पंचायती राज मंत्रालय की सेक्रेटरी विवेक भरद्वाज हाई लेबागसी की मियाम इसिंग मरांग कायने फंगन मंगमनबा अखोई पुमनबंगना अमतो ओइनो खोनमिनबगी तंगाई फदब लई नई दिल्ली द पांगथोकपा जाति थाकी ओइबा ग्राम पंचायत सिंगी वाटर बजेटिंग एंड वाटर सिक्योरिटी प्लानिंग की मतांग ट्रेनिंग पीबगी थौरम अमद सरुक यारदुना श्री भरद्वाज हाई अमतो ओइबा पांदम द मियाम हुमना थबक पाइखत मिनरबदी मिपुम खुदिंगमकता इसिंगी अवाब लहेलोय इसा इसाना एगी एगी मफम सिंगदा इसिंग योग तुना थमलगा मियामद तुंगद कानब फंगनब होनमिनासी यांखै तरुक सुबा इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड IPHO लिसिंगनी कुनतरुकता भारत की महिरोय मंगा सनागि तकमान फंगलगले थासिगि मरी देगि तरानि थोय पाउबा कोलंबियागि बिक्योरंग गमामादा सथकिबा कंपटीशन अदुद भारत की महिरोय मंगा आसी सनागि तकमान फंगलखिबनि मखोय सिंग अदुदि पुनेदगि कनेक्शन इंदौर दगी रिदेश आनंद बेंदलाल नई दिल्ली दगी ऋषित गर्ग मुंबई दगी सुरेश सौरिया अहमदाबाद दगी सबरित जोशीनी भारत रशिया चाइना कजाकस्तान साउथ कोरिया ताइवान लोन पुन आनब पोजिशन फंगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कॉन्टिजेंट सना की तकमान मंगा फंगलपद नुब फोंदोरगली सोशल मीडिया थागत वारोल श्री मोदी ने हाय भारत की महिरोइसिंग लेप लेतना होनबद मालेम की थाक तोान तोानब लम कयाद मांगजिल थाबंगमली नोंजु बेंगोल नोंजु बेंगोल राज्य विधानसभा पास तौक अनौब एंटी क्राइम लो अनी राज्य चब हौरगनी राज्य विधानसभा पास तौर पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज बिल कुंतरुक वेस्ट बेंगोल मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर अमेंडमेंट बिल कुंतरुक चाहिए जून ताद पास तौर राज्यपाल अयब पीबदगी चब हौरगनी पाउ लोजरे
1: थरुम संदोक्तुना ताहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दिखने हौजिक पुंगफम सिदा अमुक लांथोक चरी परिंग नाइन चथ जरीब रेडियो डॉक्यूमेंट्री शुरिल उमंग लाई हराउबा अईब एल अशोक कुमार थरुम पुथोकप थांगजम इबोचा सिंह
2: हौजिक तावीरसी परिंग नाइन सथ जरीब सक्तम उमंगलाई हराउब तरा मंगा सुब तांक अईब लेप्राकपम अशोक कुमार पुथोकप थांगजम इबोसा लौवीरसी उमंगलाई हराउब तरा मंगा सुब तांका

0: 타와이미 꼰바 로이라가 마이비가 베나 삭바가 롱콜론 자고 야두 까이다나 라이바울라 타팜드 짱라가 롱 아무 콜리 아숨나 쿵탕 까이다나 마야이드 짱락투나 라이바울라 타리바두기 왕마다 라이롬다 마이 온신두나 레피 아두가 레럭투나 온톡라가 피가와두 마팔롬다 아훔락 인토이 라이롬다수 아훔락 인실리 아두부 라이로이 누미타디 타렐락 인토이 타렐락 인실리 마팔롬다 인토코 마탐다 마이비나 아숨나 라위
1: हो लाइनिंग थौ मनाय लाइरे मगी मनाय सा लाइनिंग थौ लाइरे मगी कंगले मा सुमांग दा पया चेपसी लोंग संगाय याइनप लोंग फुमदी हामत लोंग चोमलांग खोंगथिल लोंग लोंगलेल खुता पाइ दुना कुमसी कुमजा सिगी फतबा हाउथिबा वना ngौदोंग लाय बुक चटिफाई तिन मुलाय मु ओकचिल सौजिल लाय पुनमक्ति हाउरे खान पांगबरोम दा होइथरासि हाइदुना मपालोम दा अहुमलक होइदुई
0: मथंग लाइरोम अहुमलक इनसिनब खुद अनीना फिगाउ सारीब अदुगी फिजिल अनी पाइरगा माइबीना अमुक लाउई
1: हो लाइनिंग थौ मनाय लाइरेम मनाय सा इबुंगोय बेमगी कंगले मसुमांगदा हराउ सक्षेम तंबा थौदोक कुमै सानबसिदा थवाई मंगा मीगा थान तरुकमक थवाई नुंगबुम अचंगबबु सना संगाय नुंगायबद होइजिलसि थवाई हामचत न फरोय मिरेल हामफोय न फरोय हाइदुना लाइरोमदा फिजिलदु अहुमलक इनसिलगा स्वा हाइदुना लाइरोमदा खुद अनिना लोंग पाइदुना चेनसिली
0: लाइमांग यौरगा माइबिना सिंगु इबुंगो खुयुम इबेमा सिंगु नंगी कांगलेना सुमांगदा कोरो सुपन सानाबा वांगबल सुपन सानाबादि नदारेम खाबिना खुरक छना लैगे येतुना इबुंगो इबेमाबु सिंथोकतुना सानारुबाबु हनजिनबिरो हे इबुंगो हे इबेमा लेमलेङाबु खोनब नत्ते लानिंग थौ लाइरेमगि याबि थवाई मंगामक मिगे थाना तरुकमकपु खोनजिन जबनी लेंबि गनु इबुंगो लेंबि गनु इबेमा असि हायरगा लाइबौला थाफामदगि लाइसंग फाव बचंगलै अदुदगि अमुक हंदोखिब मतमदा लानिंग थौ न थोइरे लाइरेमन न थोइरे हायना खुबा खुदुन सगि
1: लाइनिंग थौरोमदा नुपा अहुमना माइबिगि तुंग इली लाइरेमरोमदसु नुपी अहुमना माइबिगि तुंग इंदुना लाइबौला थाफामदगि चेनसिंदुना लाइसंग यौबा हानब ताने हान यौबदुना थोइरे हाय
2: ओ लाइनिंग थौ मपारी लाइरेमबिगि ममोम लोइसा इदायरें खुम्बरे लचंग बसिदा इबुदा उबेन थौना हराउ सखचेन तम थौदो कुमै छानरक बसिदा तिमु फतबा लाइमु फतबा तिंजा फतबा लैचा फतबा पुनमक से खान पावा माइ कैदा थरेदा लमलेदा हमला होइदर मसिको ओ नुंगाइबा इआइ फबा तमयांगबा कमयांगबा पुनसीबा नुंगसांगबा तरा चांगनिं खान चाक्सौबा तरा येनिं खान येनछौबा छैदब पुंगलेन थाबा नादब पुंगलेन थाबा ना चिंगु लाइगि लाइ कोनुंगदा हमलो होइजले सिको ओ ओ लाइनिं थौना थोइरे लाइरेम बिना पोरे या या हो या हो या या या या या ओ लाइनिंग थौ पारि लाइरेम बि ममम लोइसा ओ हंद मुसुने तिमु फतबा लाइमु फतबा तिंजा फतबा लैचा फतबा इदारें खुम्बिरेल अचंग बसिगा पुली पुक्षा लाइ हौना फोगरी पुगडांग लाइ लाकदबा पुनमक तु ओ खान चौब लमले मारी सुगनु इवाइता तुबि इवाइ कोले लोरि बंगा चिन कोनु कोलिबा घारे न कोनु कोन थारि बा लाइ नि थोंग लोलि बा लमले लिदाइ पुंगदा इरि न कोंगोन ताक पुंग न नुक्षित न मफुमा तोय नुक्षित तोरे मफुमा तोय तमना होय होय लाउन होय दरे मसी को ओ नुंगाइ बा इआइ फबा तमयांग बा कमयांग बा पुंसी बा नुंगसांग बा फौगै थनबा चेंगै थनबा लैपाक मरा इंग न तमना निंग थौ पुंसी नना बना चिंगु मागि लाइ कोनुंगदा होय होय लानो हुनो होयजले सिको ओ लाइनि थौ मपारि लाइरेम बि ममम लोइसा ओ आयु कियेंदा आंगन बदा चिंगु लाइगि लैमांगदा चरै फिसेंग छेलेरगा पया चिपसी लोंग सांगा याइनप लोंग फुमदि हा

0: Lining tau larem bi ani gi matik mayai bu saitha duna mai bi ani na awai akum tau duna isai sak laga jagoi sai
1: chingu khoyum lining tau yoi bu na khoimom lairema chingu na tei na naung na ayuki yenda angan ba tara gi changal cha duna charei na phijet lei teng le kanglei nang gi na sumang thobom nang gi langpuroi chekla nang gi chakta pham pombi na nang gi kaidong pham chingu layam pumbaga harau mathoi karuba thaudok kumai sanaba ningthire phajare chingu na khoyum lining thau
0: atupa mai bi aman amuk lining thau laire magi matik mayai bu saitha duna awai akhum tau duna lairul isai sagi
1: sanana sangai nungai ba mirai mana kangamda ponglai mana yongamda pamna leiba lokumna songki naba sangnida खुबोम न तांग द खुनिंग द सना गि थंबाल अनीना इंगांग गांग न शाटकाइरे सोरा रेन गि लेबाक्ता सना थंबो तोनिंग थो लाइफाउरे सजिक न अनी थोक पगुम थबान अनी पान बगुम सना न फंबाल लांगलिबा निंगथिरे फजरे नदाइरेम खुंगंग अचौबा खुंजाव बबु पिबियो लैचाव बबु पिबियो हे लाइनिंग थो लाइरेमा
0: Lining tau larema anina harau mathoi tamna nungai marang hauna khunja miyam na saruk yaduna khunja unaba laicha unaba harau saksem tam thaudok kumai sanabada lairul isaina saithari
1: chingui bungo khoyumi bema koro wo chupna sanaba wangbal chupna sanabadi ahing inung shoyai mada nadairem khungang achobagi namumi pumwatana thawai mirel changkhon babu chetna chana konshin biu singe leka thakta te tharashi leirang leyom nungda hanjin biro
0: mai bin isai si sak laga laning thau laire ma ani bu khurumi mai bin khubak ani da khuraga khubak ting thok laga khud yet na laning thau da han na oi gi lengjum ma pa da ting thoi khud oi na laire ma da yet ki lengban ma pa da ting thok pa da oi gi khong na yet ki khumit ma pa da खुनिंग कांगना खुदोल लेतारगा खोंग अनिमक सिना सिनाना तवी
1: माइबिने पुरिबा इनाफिना योंबा खयोमदु थोकलगा लैसिंगदु लाइद कटली फिजंगि फियादुना लाइगि थौगल तौरिबा निपामरी लेपिबादुदा हानगुम अमु खरवांग नखली फिबुलनियादुना खुदै शेल काउशेल पुरिबी नुपी अनियादुदा हापी
0: लाइबौसाब लोयख्रब मतुंगदा लाइ खुरुम लगा लेप लिबा लाइन थौ लाइन बि अनि गि थौगल तौरिबा लाइ पुबा लाइ पुबि अमदे लाइबौद याउरिबा मि पुमनमग अदु लाइन बिना लाइनिंग थौ गि मांगदा अदुग परेंग द याउरिबा मपा मपा थोकप मिसिंग अदु गि ममांग ममांग द चंगसिल लगा परेंग अमतो ओइना चलली माइ बना मांग थाय
1: आहान बदा थांगजिंग लोमद गि हौना हायबदि हराउरिब लाइ अदु गि मायोन येंग लगा लाइनिंग थौ गि येत लोमद गि हौना चोंखोंग मरी अदु येतने येतने चली चोंखोंग मरी असी माइकई मरी गी चुक खाइन खंगने मथंग मथंग चलकपना लाइबौला थारिब मफम फी खल्लिबादु गी मयाईदा ममई ग मकोका हेक हेक थेंगनगनी मसिबु ममई ग मकोका चिकनब कवि
0: लारेल मथेक चटपदा परिंग तत्पा काइ बयादे करिगुंबा तत्पा काइ बथोकलबदी हराउरिब लम अमसुंग लाइबाकी अना आयेक वाथोक लानथोक कया तौगली हाइना यामन कीना लुना लौनै
1: कंगलै हराउबद चलिबा लाइरियल मथेकसी युमजाव पाफल कवि लाइरियल मथेकसी मखल मापल सुइ मदुगी मनुंगदा युमजाव पाफल असिना कंगलै हराउबद चतली
0: उमंगलाई हराउबद लाइरियल मथेक हाइदुना चलिबासी आइखोइना लानिंग थौ लारेम बिगी कोलोय संगाय सारिब अदुगी सक्तम अदुबु कोइरगा मसा मसु ओइब सिंगना खुरुमबगी मौंग अदु ताकपनि लारेल मथेक चतप मतमदा माइगै ngakलिब लाइ इबुदौ थांगजिंग मारजिंग कौब्रु अमसुं इबुदौ वांगद्रेन लाइरेब मफम सिंगदा लारेल मथेक चतुना खुरुममि लोइरगा लानिंग थौ लारेमबि अनिगी मफमदा खुरुमलगा लोइसिल्लि
1: लाइमांगदा परेंग अनि थोकन लेपलिब परेंग अदुना लाइसुमांग अदु कोइरकपदा इबुदौ थांगजिंगन लाइरिब माइकैगि चिथेक योबदा ये थंगब परेंग न ओइदा ओइ थंगब परेंग न येत ओनथोकतुन लेपि अदुगा माइबना असुमन लावै
2: 哦来都给你们巴黎来你们给你们梦龙山哦好几天给你不不说啦的没让不不唐宁来上不过的宁头外阳的没办土地给没人可以用的昆山来上呢不给他们的巴黎梦龙山呢不给他们巴妈巴唐个唐个来个来个苦的心高兴先不米给米个苦巴苦能够连巴个连东个你们可能俺的天后也要通过都是够哦呀呀

0: पनि नहो लमाइ माले तिम्रो लाइउज हे ओ
1: अशुमना लाइनिंग थौने येत लैरम बादुना ओइदा अदुगा लाइरियम बिन ओइद लैरम बादुना येत लैगनी लाइनिंग थौगे परेंगना येत लोमदा सुमांग दु कोइन चटली अदुगा लाइरियम बिगी परेंगना ओइरोमदा कोइन चटली अशुमना कोइन कोइना अहुमलक चटली

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: If driving is art, you are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort and fuel efficiency. With 6 airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
2: Get attractive offers up to rupees 45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
3: Tharum Sandokto na Tahanjari Basi, Akashwaniyum Falgi. FM Sangai Channel degini. Hauze pungpham sida muglan tok chari. Tongan tongan ba Manipuri matamisai sing. Khodol gi ahan bada taminasi. Moirang them ti kendra gi khonjel da BK Panjimayum na sairing ba matamisai ma.

0: 모양이 사! 깔랍던 학당 담배 남고!
1: 모양이 그래. 어이 음시다 뭐 미연이 어머나 마이베 해라 뭐 어두가 뭐나 어두가 뭐냐까나
2: 아이고 이봐 아이고 이봐 그 얘기로 노래를 읽고 내 뿌리면 지 뭐 아이고 아이고
0: 아 가가리라
1: 에이 웃어 마이베 아유 능력 파먹게 놔요 아유 능력 파먹게 놔
2: 아이들 안 기다면이나 아이들 안 기다면이나 이게 다 먹더니 야야 자이
0: 아이들 안 기다면이나 아이게 다 먹더니 야 자이
3: 어이 시아브라
0: 시아브라
2: 아이고 이마 아이고 이마 아이고 이마 뭐가 아이지 바라보시 바라보시 나 파악구머니네 아이였어
0: 아이게 이뻐 아디 난 가오나 눈빛에 쪼없자마자
1: 에이 오사마 이마 능보, 능보이 코이나 능기나 뛰쳐보던지 잡자는 피가네. 나 코이구만 마이브까야 하시는애. 나 시기남담 실례리바. 아 시구만 마이브까야 보이자 레이카도 할리바. 자로, 자로.
2: 이봉아, 아이디 따 생을 난 기다보니 코이봉아.
0: 아 자로, 진진아, 자.
1: 대마, 대마는 것이, 대마는 것이. 나나 왜 이렇게 막 눈빛이면 석도 못 씹을까리노 나 부러워해 볼래 이러비 용기 모으면 나보 아 숙도 걷잡아
4: 박가스나
1: 아이비오 이때 먹이까리 님 동다보기다 막 나 신나나 왜 이렇게 막다 아 숙도 걷잡아
4: 박가스나 아이디 부러워해 기미는 시토기한 박나봐 윤반 부심에 익시나 혼나잡았다니
1: 그래
4: 그리기노 그러기는 낭 이때 뭐 속란을 노리바
1: 윤반 먹이 아들 독들 해야되나 맥급 커딩 윤반 뭐 수홍 뭐 씹어 뭐 씹어 눕비 여비가
4: 시원하시다 뭐 폼로 눕비 여비의 코 씹어 이 샤기야 닝 뭐 빠뭐 타바가 뭐다 닝 땀을 빵 촉바 야더불어
1: 까락 숨이 가뿐느나 닝 가땀나 힝리바 눕비이나 코이나 그러면 뭐 그런게 닝 가땀무나 닝 코이나 빠물립세 아이비오 그러면 닝 땀무나 샹아금나 앙음앙음 샤차짜나 보더라 나 들어가나 마파 디르다바 마샤니나 마마기 마망 막다다 앙암망암 하뚜옥나바두라
4: 야리 돌라 이때 이만다
1: 이때 이마 이마마 우리 난길이 두따로키 콩셋까해 미가노 이기시엘 나묵난 미가노 샤가이시기 샤가이시기 밍첫깟 미오네 이때 이마
4: 이따 이마게 이모 내가 이게 와시오는데 다 고기다 먹게 아이디 잠잠나 윤무시나 도레이네 시엘리바 아마디 남담 다음을 사파올람 펀들라 입에 넣고 있다 먹이다 먹이 행드나 오자 마이브 헤라모포 윤무시나 꺼우드나 이라 도리 토론빵 토한 막 극다니
1: 대마
4: 아더보 아더부 강강드나 조금이야기 코나오면 따르기
1: 미용기구나
4: 아마 머시드 착강나무 크라진 실력보다기 고동 팀의 토그들을 칸누나 이어 머시드 강로로
1: 못하네
4: 이따 이만 라한다마 시행문에 이따 이마기
1: 어 이따 이마 이따 이마기 와프거도 나나오에 이하자래 아더부 이따 이마부 마이베 해라 못할까이나 깎게다만에 하이드나 라우 콩리바 미야음시드 신어보 이따 이마기 시행마 품승도 다잡이키더라 아이고 이따 이마 이따 이마게 시험와 품싱하다 다접이 긴거더라
4: 박하스나 나 따 이마 이보 나 따 이마 이보 막코이나 야닝대 하드나 숨만 안 좋디드나 막코이나 비닝보단디 핵다 비부야브라
1: 이마
4: 시기 마이라 빠이비 이마이 벤치는 까이나 아까 비크라바 마루 꼭다리 콩고이나 카마시가 시기 왕깐
1: 빠이비
4: 마 시기 샤마하나 시기 미와이 끊어라 따비크래
1: 이마
4: 하여 굴라이 빠이비 싱나 말할래 때는 치이브기다 니 피크라바 똥다
1: 하이파이브신가?
4: 아이 코이 그래 아이 코이 난 그래 아이 코이 이몽겨와로 새롭게 하자니 하이마씨 뭐 핵다모 야오가드라니
1: 야네 이때이마 뿌나먹가이를 안키만 해 뿌나먹가이를 안키만 해 이때이마 아이는 마이 빗까먹래이보 다모이 쉐잉 눈시작해 아더보 मान ही भू मिला ही बिरा बदा आई हाय फम तो फम कम किदे आई काम कम किदे ते मा आई काम कम किदे आई ना कलक पेन लमन खुम नब की दमाग कलक पमति मया पाई भी मियाम सिंह बो माने ते मा माने पुना मा कई ना लान की बने ते मा
4: ते मगी बुआ पीओबी खुई पुंछी अंगो बुचे बांग पंखले अमक पमसु मतंग शंकी मतंदा पुंछी कोलर ओइ दमन आइ बसे करेगी दमन ना खुई ना कमी
1: अरे ते मा पुरा बके हे मियांग खोलो अते मया पुरा मा मया पुरा मा पुरा बके ना लाड किबने मखुए ने बके ना कट पिगे ना मया पुरा मा
4: ने बके ना कट पिगे ना
1: नते नते मैं पुणे माँ मत मम्मा की नते नते मैं पुणे माँ पुणे माँ कहीं न लांग की बने मत मम्मा की अश्लील मलाय हराओ बबू आई नहीं इत्ता की रांग नों थोगल बगी तो साले आई वो फ़ोम से मुक्ताबी मैं आप पुणे माँ नते
4: मगसना
1: ते माँ
4: नंग मिया मशीन वामुन खांगे न खलगनो मशीन नंग मिया मशीन हनाज दुनसो मसी दिल्ली में मिया मशीन ना मुकेश उठाते मिया रोए
1: ते ते माँ
4: नंग ना पना नून से इतना सो मिया मशीन ना कैसे ना मुंगा फिर रोए
1: ते ते ते माँ
4: ऐसे ही मिया मशीन ना ताजे बिरोए तभी ना तो इमाइ से मसी की मिनोक चार मुझे समाज मसी की मांग दा इतना ही मुकेश को मसे अब खाना उठ के रो नंग इसे ही मामू वाला उनको कोई
1: ते ते माँ ते माँ ते माँ लम्स नाइ दे भी मावो इखन मक्ष थांग मट मट कक हट करे
4: मुई बाबा
1: नंग युम सिकर बुलाई
4: मुई बाबा ऐ भी युम मस्त लगतना मपम कदाई दे चलो हर बनो मुई बाबा
1: युम से नंगे ले फमते नंगे ले फमने के थेंगे लुमाई जा
4: नते
1: शहर की गली जा होते हैं की अमम बक्का दा
4: मुई बाबा ऐ भी फोबी जे भी मुई बाबा की खुद पेन है ना भाई वो वारक पियो
1: थबले
4: अरे भाई आई भाई ओम मसीता दो उतरे चलो आई भाई ओ तो दे दे आई की पाप द तक पी गए ना मुई बाबा
1: हे लेबो न पाप चेले बने खोंग दना इ मुंग द खोंग काम है कांचन बेटा मि कब सि मत दा नंग मुई खुद मक्ष थांग ने मटुक मटुक कक हट कने
4: ओ मुई बाबा की पुक्ची ने दी ओखे दी परे आई आई वो हाल के मुई बाबा ने पिंबी गने हार बदी मुई बाबा आई बहाल पीरो, आई बहाल लो,
1: आई
4: बहाल लो,
1: नमी चुम्बक चार कर रहा है तेरी,
4: खानो,
1: खानो काम
4: ना,
1: मालूम, कहीं ना, ना शिवा मारे तो वीर शिवा कहीं ना, इमा, ओके मारे तो शिवा कहीं ना, बाबा, बाबा ने कैसे वीर शक्ता मुझे वो कहीं रोने बाबा,
3: नंगी वाहन रंगों हंगनो, नंगी वाहन रंगों चप चप आखुम बामा बड़ी, हंगो नमा माय पी सीधा
1: मां बाबा ने हर बुआई सी हाथ कहीं नो बाबा ने हर बुआई सी हाथ कहीं नो इमा
4: माले इमा दिन सी के तबियत पाल सीधा संगम ने संगो नाइ दे भी हंजिल पमल बे कंग दे भी माय बी ने माय
3: नंग नंग मणिपुर बन गी नामा दहिं यारी एगा सानरो अरोन बला सड़ नाम में आम दो नचा जे से तमो
1: इमा बाबा ने हाय वो है शिक्षिक अर्थ करी ना बाबा ने हाय वो है शिक्षिक अर्थ करी नहीं माँ
4: माले मणिपुर जी ने निश्चय न मरम मोई देना ऐ कोई माय बा माय भी मैं हम पुणे में लाय हराओ बोलो रगा यम दालो पकी पामे में तो फंकी देने बंगो मत मधु दा ऐ कोई माय बा माय भी मैं हम पुणे में लाय बंगो दे चंगे फंलो दुना पुण्य यारे बिनकी ऐ कोई गिरक तशु मरम चचुम दब माय बा माय भी पेना खुंग भी यारम बना माय भी कबूक ले दो बिना खून भई तो साद कहीं ना कटी है
1: कहीं
4: मस्त सुनता ना लम्बा मधुदा मैं पुरे में ताम ना लेकर भी मैं तो उले भी कबूल ने पिए मसो और जहाँ हिराम और के खून गोई ना बिगी बद्राम मतो मसाम मतो हम द काम बंगम द बदेगी ओ तक तूने सिंजा किए हैं माँ के माले अशिंग बपाओ की आशा है नशे मत

0: मतंग तमने रख पड़ेगी नंग बबागी ना कोंग यो की दुना नमाई बसुनी ने हे बुगा नमाई बसुनी
1: माँ शन नशीब होगी मनाक तले पुपुगी दमक पो शन हाथ पर हाय दुना दंडी है तो पी भी आवरने
2: मलेम
1: इन्हें थाजाई आई की मान कहीं दोगे तो शोरान बली चट खक चला
2: मलेम
1: इमान वान तांजकी बा अमक बियाओ दे बो शिंग लबो हुमांग इमा मंदुना ने आई ने गसी एमसीएस भंग दुना गसी यम सीधा हले ही बसे
2: ना बु एमसीएस आई हंडो
1: आई आई एमसीएस भंगे बाबा आई एमसीएस भंगे बाबा
2: मरे मरे माले
1: आई की मादी मैं पुरोहित बत्ते बुनिंग जभी सती धर्म कैसे दबी लम्दा मसीह की ट्रेडिशन अमादि कल्चर वो योखर पर पाम जभी सायोग नायोग पस भी इमा आय न मिंगा वो द मत्तिक चप सार भी अशेख भी इमा माय भी ने
2: माले
1: बाबा इमा ने गान बकई बाबा ने पाम जा दबा माय भी हाय बस शिम पाम जा दी कोंग तंग दुआ हाय भी यह की दबा इमा ने गान बकई जगो इशाकी में इशाई शकी उपना मक मचाए की दबा होना बदले मशाई वो भी थोई भी है वो भी वो है ना वो है ना बदने
2: कोई है बा
1: बाबा ना बाबा ने इमाम के ऊपर ने पिपी के दबो तंदी पुना मग वातोस के होक पुमे ने बा नशाई वो तो पिपी हो बाबा
2: माले
1: इमाम के मौसम लगा नशाई वो हाथों पे हो
2: माले
1: बाबा की नकुत मरे नशाई वो कक्तू हाथों पे हो
2: माले
1: अरे वो हाथों पे हो बाबा इमाम इमान नशा की तो बुआने मंजर पर मगलार के यादों का सीधी बंग पाउडर है, बाबा, बाबा ने नशा की तो बंगते वाजे की बंग के यादों का सीधी, नशा भाई पापु बिशक बुए ने बाबा,
2: अलेम,
1: अनाव मिनो बते दिनों में नशे है, अनाव मिनो बते दिनों में नशे के तो बंगे,
0: मादी पुरे बने थोप पिरे बने पीने, मां पुरे बने थोप पिरे भी करम मनु पियो बिना Gasing kita bang pala si nama pura ibu manak tu memuat minok tam tu nelayi bangam gani.
2: Tumbalai.
0: Ima di aji lima makai pak tepang lebi mai bine.
2: Tumbalai.
0: Ima gasing dia yang masih tadok tu nak selagi kui bunga.
1: Ima nak sakit biaru. Nak sakit biaru ya Ima.
2: Malam. Nama kamu.
1: Ima. Ima. Ima.
3: No, Baba, kundila. Hauzek tabi kri, sumang lila. Mai bido mai bido mapuro bido lila asigi arwe besaru. Sanabi ki bakangbu, Shanghai Artists Association gi lila kangbu ni. Tharum sadukra tahanzari basi Akashvani Imphal gi FM Shanghai channel ni. Kangan jabama. Lagliba julai gi tang taramanga yumzakai sanumit. Nungtil pung tarani thoi minit tara. Good afternoon ladies gi. Aikhoi gi haksel da tamzari. Autism bu khangdok pa madi narab sing bu karam na loina bigani expert in link sin bigadaba dr nelson loitongbam assistant professor department of psychiatry jenims lamda masigi nupi yobi singna ai khoi gi studio gi telephone number 8798803293 da call to biraktuna khangning bakaya khangau na bagi khudong sa ba lobiyu telephone number amukaning singjeri 8798803293 Kangen jebeloi jere. Akashvani Imphal, Pungphom Sida Tabirasi, Kundrakpam Ramesh Kumar Dagi, Violin.

0: 아니 홈싸워 하이버스 야우리 다 먹이 볼래 싱은이 정 아름니 하이냐
1: 도터는 이사기 와리 하리버 마슬 싱아두디 45 라이스 하울라바 코이 라이스 더 로이니 야우 하이버니
0: 아싱브르네
1: 아싱브니네 이름 덩기 마리엑 마하울레이 바쨍시다 45 라이스 나 먹고 좀 먹은 하고트나 콩글라이 주바 이 와르바 비타민 와르빈 싱 먹어야 아마드기 나 톡부숭 남미에드나 하이 하이 마마 भारत सरकार ने मियाम ने फंगली बचेंग सिंह ऐसी दी 45 राइस फंगन बहाई बसे प्रजा के हक ओर बनी इरम दम मणिपुर की सो कोई राइस मिलना कोई 45 एरे राइस हाई देना मियाम ने फंगन कर बनी ने ऐ अदु कने काने बसे लहोर सिको अकोई 45 एरे राइस सीजन रसिको
0: फंगफम दी
1: अकोई मार्ट वेबसाइट अकोई मार्ट एप अदु दगी टेलीकॉलर सिकी खुतांग दलोइन ना मना नक दुकान सिंह ने लोइन फंगे हाई बनी
2: हेना कुपमरो की दमक 9233594391
3: ताबिरी पाउसी आकाशवाणी इम्फाल दिगिने लेबागसी ख्वाइदिगी चौब टेक्सटाइल गी थौरम भारत टेक्स लिसिंगनी कुंतरुक हयेंगदिगी नई दिल्ली गी भारत मानदपम द हौरगनी नुमिनिनी सथकदब थौरम अस्ता टेक्सटाइल्स फैशन सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेस्टमेंट अमसुंग इंटरनेशनल ट्रेड गी लमद भारत असी मालेंगी लुचिंगबा अमा ओइना हावलअलिबा असी उथोकनी थौरम अस्ता पोट पुथोलिबासिंग ललोन इतिक तौरिबासिंग मालेमगी इन्वेस्टर सिंग पॉलिसी मेकर सिंग आर्टिसन अमदी स्टार्टअप नसिंगबा सरुक यागनी नई दिल्ली पांगथोब पाउगी मिफमंद अमदा भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन की चेयरमैन नरेन गोयंका ना हाई भारत टेक्स की अहुमसुब एडिशन असिदा टेक्सटाइल की पोथो लिसिंग कुन हेन उटकनी मसिदा बायर्स लिसिंग तरेट ललोन इतिक तौब मियोय लाख अमा लिसिंग कुन्था रोम सरुक यागनी मांग हाई लेबाक तारा मरीगी इंटरनेशनल एग्जिबिटर सिंग छु सरुक यागनी भारत टेक्स लिसिंग अनी कुंतरुक असिदा मणिपुर सु सरुक यादुना लमदम मसिदे पुथोकलिबा टेक्सटाइल गे पोथोकसिंग उटकदोरी भारत टेक्स असी याउन बगिदमक हौजी औजी नई दिल्ली द लेरिबा राइज गी हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स गी डायरेक्टर एलांगबम जितेन सिंगना आकाशवाणी इम्फाल द हाई भारत टेक्स असिदा मणिपुर गे कौना गे पोथोकसिंग होम फर्निशिंग प्रोडक्ट नीस प्रोडक्ट अहेन मियंग थमदुना उटकनी मांग हाई हौकी बसही मरी रोंगी ममांग देगी मणिपुर गे पोथोकसिंग मपान लेबाक ता थादोकतुना राइज असी गी सेमिलोन फगनन बहोलनदुर लाकली Siri GTN Hai.
4: भारत टेक्स 2026 मणिपुर को टारगेट तब से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन शोकेस तौर बायर थी अखोद इनडायरेक्ट बायर मैम से डायरेक्ट बायर होना अखोदी एक्सपोर्टर डेवलप तौर फॉर द लास्ट फोर फाइव मंथ्स वी हैव ग्रूम एक्सपोर्टर डायरेक्ट एक्सपोर्ट तबजी प्रॉब्लम पोसई होम फर्निशिंग आइटम एंड टोना प्रोडक्ट अखोन अत अत पोट मैम टारगेट तौर ओनली द थिंग इज पोट फजन पुथप फजन अखोने डिमांड पीब गमगदबा चाप आना स्टैंडर्डाइजेशन पुथप गमगदबा पोट खर खत्तम
3: मणिपुर फायर सर्विस ने सिंधुना नोमगीब निपान सुब मेगा बेसिक फायर एंड लाइफ सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम असी इम्फाल लेब मणिपुर फायर सर्विसेस की हेडक्वार्टर्स पांगथोकरे थौरम से तोगान तोगाम स्कूल सिंगी ओजा सहुम हूं तरह इंडस्ट्री की कर्मचारी निफूमदोई हॉस्पिटल हेड सेंटर सिंगी डॉक्टर नर्स चाम कुंथ्रा तरुक होटल की स्टाफ कुन ऑयल डिपो की यौन पुनः मई चंगा हूंफू हेन सरुक याकी स्टॉप डायरिया कैंपेन की सरुक अमोना काक्सिंग जिला की तोगान तोगान मफमसिंग स्कूल खुद सा निथीना करम हामगदगे महिरोइसिंग निथीना खंगबगी थौरम अमा पांगथोकरे थौरम असी पांगथोपगी मरोइब पांदमदी महिरोइसिंगी मरक्ता खुद सा निथीना लुनाना थंबगी हैनबी लैनबनी कैंपेन असी डिस्ट्रिक्ट जोनल एजुकेशन ऑफिस अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने पुन्न सिनबनी थासी कुंथ्रामाथोई फाउ चथगदब कैंपेन असीदा जिला असीगी सरकार की अमदी लनाई स्कूल सिंग कोंसिनगनी पैलेस कंपाउंड इम्फाल द लेबा बाल विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल द तोगान तोगान स्मार्ट क्लासरूम मरी गसी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल की वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपम मिश्रा ना हांगदोकरे विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर ना सिंधुना पांगथोप थोरम अमतदुदा डॉक्टर अनुपम मिश्रा ना हाई गसी मालिम की ओइना आईटी याउना हिरम क्या द चौखलब मतम असिदा गसी संगारी बा स्मार्ट क्लासरूम असिना स्कूल असी भारत कतनतना मालिम की डिजिटल वर्ल्ड द चंगसिन बा गम लगनी पाउगी मरखथना ब्रेक अमा
5: NABH Phanglaba AOI Babina Speciality Hospital Asida Medical Surgical Radiation Oncology Nuclear Medicine Laying Bagi Khudong Chava Pizari State Asida Ahanba Oina Thyroid Cancer Gi Iodine Therapy Haubaga Loinana Cancer Khangdop Naba PET CT Scan Leiraba Hospital Ni CMHT PMJY Card Fiber Amasung Government Employee Singisu Laying Bada Khudong Chava Pizari Dr. Singna Tumor Board Phamduna Anaba Singi Laying Da Chawna Mating Pangli Akupamaro Gidamak AOI OI Babina Speciality Hospital, Sajiva Jail Road, Khabai Soi, Imphal East, Tanabiu.
3: Aga Kazbani, Imphal de Gipau, Tabiri. Nagalengi chumukke di majila da IED pokhaiba da Assam Rifles ki jawana mashire marina sokle defense ki PR on high Assam Rifles ki kangbu aduna lambi selingaida sukhobi mapa yor

0: काम भी नहीं आया अब तक।
1: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
2: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: गुड इवनिंग मणिपुर थोरमसी कुदोल गनी सुबद फंगजरीबा एसएमएस असि बुथावी रखलीबा मरुप सिंह सिना मयांग लांगसिंग दकी सोंगथाम बसंत अखाम दगी देबचा नमदि लमदेंग दगी नेत्रजीत मरुप सिंह सिना जिंग सिंह बिरकली बाई सयसी मीरा मेमसा फ्लमसी दगी सयम खखन बिरकली इसयसी बसेसकली बसिंग सदानंद नाउबॉय रोसिबिना मदि नंदेश्वरी सोरे सिदंगी मयक्ता बिसे मरांग थेमना सरांग बिसेनी कुदोल तमजरी

1988 में आई फिल्म लिबास से आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत दिया आर डी बर्मन ने और इस गीत को लिखा गुलजार ने। कहते हैं कि कभी कभी एक ठंडी हवा का झोंका बरसों पुरानी यादों को फिर से जिंदा कर देता है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो उनकी खुशबू होती है ना, हमेशा दिल में बसी रहती है। बस एक ऐसा ही गीत जो आप अगला सुनने वाले हैं, हमें जिंदगी का सबसे सुंदर सच दिखाता है और सिखाता भी है। सुख और दुख दोनों ही जीवन की धुन का हिस्सा है।

1972 में आई फिल्म शोर का आपने ये गीत सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और इस गीत को लिखा संतोष आनंद ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म खुशबू से ये गीत, आर डी बर्मन का संगीत और इस गीत को लिखा गुलजार ने। कहते हैं दोस्तों कि कुछ पल मुस्कुराने के होते हैं और कुछ पल खामोशी से गुजर जाते हैं, ये तो हम भी मानते हैं, है ना। हमारे भी बहुत सारे पल इन्हीं चीजों से, इन्हीं पलों से गुजरे हैं, लेकिन हर पल अपनी एक कहानी छोड़ जाता है। और जब बात साथ निभाने की हो तो कुछ रिश्ते शिकायतों से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि शिकायतें प्यार में अक्सर होती हैं, लेकिन जब शिकायतें होनी बंद हो जाएं तो वाकई वो रिश्ता रिश्ता रहता है।
1: बरसों बाद ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे।

0: कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
0: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो हाथी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

1975 में आई फिल्म आंधी से आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार का लिखा ये गीत और आरडी बर्मन का संगीत। क्या खूबसूरत एहसास है ना, जब शब्द कम पड़ जाएं और सिर्फ संगीत दिल की बात कह दे। कुछ गीत उम्र भर हमारे साथ चलते हैं क्योंकि उनसे हमारी अपनी कहानियां छिपी होती है, उनमें हम अपनी कहानियों को देखते हैं। और अब एक ऐसा गीत जो दिल की उलझनों और खामोश सवालों को बड़ी नज़ाकत से बयां करता हुआ

0: तो दोस्तों, हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर समय रहेगा मार्केट मंत्रा का और 11:40 पर सुनेंगे गीत मेरे मनमीत। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम कुल चैनल के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अम्बरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फूक्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आर एस रघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said, he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said, both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal today began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the Indian-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. 15 fishermen went off for fishing from the Sankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FB Mahakali trawler. After 5th July, connection has been lost with the fishing trawler. A joint team of Coast Guard, Navy, state agencies found the capsized trawler on 12th July afternoon in the Bay of Bengal. 9 decomposed bodies have been recovered from the cabin of the ill-fated trawler. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident in Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, today inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where the projects worth 4,850 crore rupees were launched today, which includes inauguration of the expressway and 4-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with the laying of foundation stone of a flyover in Lucknow. In cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur today recorded a historic win in one of women's test against host England at the Lords. India defeated England comfortably by 270 runs in the first ever women's test held at Lords, chasing a target of 457 runs. The hosts were all out for 186 in their second innings before lunch on day 4. And that is the end of this news bulletin.
0: अब सुनिए
3: आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम

0: पुनः प्रसारण
1: नमस्कार एंड वेलकम टू मार्केट मंत्रा टुडे बीइंग मंडे वी शैल बी टेकिंग योर कॉल्स ऑन योर मार्केट रिलेटेड क्वेरीज बट प्लीज डू रिमेंबर फ्रेंड्स दैट वी डू नॉट एड्रेस स्टॉक और कंपनी स्पेसिफिक क्वेरीज वेल यू मे कॉल अस ऑन द नंबर्स एंड द नंबर्स आर 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to add 011 as a prefix to these numbers, right? All right, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor Amrish Saxena.
2: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में हम ताज़ा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे आज सोमवार है और हर एक सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 और 2331-0481 और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आपके प्रश्नों का उत्तर देने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा
1: And friends, let's begin with the headlines right away. In the Indian stock market, Sensex edges up 47 points, Nifty closes flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year and global crude oil prices rise. And friends...
2: And in Hindi, the main समाचार घरेलू शेयर बाजारों में Sensex 47 अंक बढ़ा निफ्टी में खास बदलाव नहीं हुआ देश की खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष जून में 4.38% बढ़ी और वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में तेजी दर्ज की गई
1: And friends, before we move on in the program, let's have a disclaimer for you all. Well, the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
2: और आज की पहली खबर घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दबाव में रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स 47 अंक बढ़कर 77,616 पर बंद हुआ निफ्टी 4 अंकों की बढ़त के साथ 24,211 पर आ गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ हालांकि दोनों ही मामूली बढ़त के साथ बंद हुए दुनिया के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले लेकिन बाद में शुरुआती गिरावट को दरकिनार करते हुए आगे बढ़े दोपहर के समय बाजारों में सकारात्मक रुख दिखाई दिया हालांकि वे एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे और मामूली बढ़त के साथ बंद हुए
1: Benchmark domestic equity indices ended with minor gains today, reflecting a subdued trading session. The Sensex edged up 47 points to close at 77,616. The Nifty added 4 points to settle at 24,211. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 and small-cap 100 indices also ended on a flat note, though both managed to close with a slight positive bias. Earlier today, the benchmark indices opened with a gap down amid weak global cues. However, they recovered from the initial losses and steadily gained momentum. Around noon, the markets entered positive territory but traded in a narrow range thereafter, ending the session with only minor gains.
2: Sensex ki 30 mein se 18 companies mein giravat darj ki gayi. Kharab प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में टाटा स्टील का शेयर 2.1%, इटर्नल का शेयर 1.5% और इंडिगो का शेयर 1.3% गिरा दूसरी ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का शेयर 5.4%, एचसीएल टेक का शेयर 5% और टेक महिंद्रा का शेयर 3.3% बढ़ा
1: In the sectoral indices on the BSE, 15 out of 25 sectors ended in the negative zone, except oil and gas, which remained unchanged. Among the top gainers, IT jumped 3.5%, focused IT rose 3.3%, and consumer durables added 0.6%. In contrast, telecommunication dropped 1%, FMCG as well as capital goods fell by 0.8%, and metal lost by 0.7%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,335 advanced, 2,068 companies declined, and 189 remained unchanged. And in the forex market today, friends, the rupee depreciated by 30 paise to close at 95 rupees and 62 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of six other leading currencies, was trading at 100.93 in intraday trade today. So, Shishirji, once again, welcome to Market Mantra. How do you view the entire Sensex edging up 47 points to close at 77,616? Sounds good.
3: If you see the what you read just now, you use the word gap down opening.
1: Yes, yes.
3: Because of the last 2 days' event, especially in the West Asia, where we are seeing that resumption of a strike by both US as well as Iran, that is having some impact on the global economic, global stock market, and that is also reflected there. Fortunately, some of the blue chips, especially from the tech sectors, they showed good performance after good quarterly result. And that is why you are seeing that the market was almost flat with a rise of 47 points in Sensex and nearly 2 or 3 points in Nifty. It was a flat. Going by the two events of last 2 days, we were apprehending that there will be some further reduction in the Sensex as well.
1: Yeah,
3: like
1: exactly. Yeah, so this is a bit of a surprise.
3: But because of this tech, blue chip, some of the blue chip techs gave some support to the market, and that is why we are seeing some improvement. But the problem is that we do not know what is going to happen, and the ceasefire which was announced seems to be over, as announced by both the, whether we talk about US or whether we talk about Iran, and that is going to have some impact on the market in this week. So of course, the Monday has started on slightly positive note, but for the next 4 or 5 days, we do not see much relief kind of thing. There will be more volatility and more it will be towards the downward risk.
1: And more anxiety because Strait of Hormuz stands closed again.
3: We do not know what is happening. Somebody is saying that it has closed down. Somebody is saying, no, the ships are still going on, but there are problems which are affecting the moods or the sentiment in the market.
2: तो आपको क्या लगता है शशि जी बाजार की आज की हालत देख के हालांकि आखिर में थोड़ा मामूली बढ़त दिखाई दी लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लगातार ये उथल-पुथल चलती रही और ये संकेत यही है कि इसी तरह से आगे चलेगा
3: बिल्कुल देखिए आज अगर मैं 2-3 सेक्टर्स की बात करूं जहां पर हमने नतीजे का असर देखने को कह सकते हैं जैसा मैंने कहा कि तकनीकी कंपनियों के शेयरों में अच्छे सुधार आए वहीं विमानन बाजार की जो सबसे बड़ी कंपनी है उसमें हमने गिरावट देखी क्योंकि पश्चिम एशिया में अगर उथल-पुथल होता है तो उसका असर हवाई ईंधन के ऊपर पड़ेगा हवाई ईंधन के दाम के ऊपर पड़ेगा दूसरी बात यह है कि कई उड़ानें जो हैं वो दोबारा से रद्द होने की आशंका है तो इन सब के बीच में विमानन सेक्टर में हमने देखा विमानन क्षेत्र में हमने देखा कि थोड़ा सा मामला जो है वो बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही कमजोर था लेकिन एक अच्छी वही बात जो मैंने कहा कि थोड़ा सा जो हमें सुधार देखने को मिल रहा है वो तकनीकी क्षेत्र में मिल रहा है और इसके अलावा थोड़ा बहुत हम एफएमसीजी सेक्टर में भी जो है वो हम सुधार देख सकते हैं लेकिन ये पूरे वीक की बात करें पूरे सप्ताह की बात करें तो बहुत ज्यादा कोई सुधार की उम्मीद जो है वो हमें नहीं दिख रही है
1: ऑलराइट नाउ वी जॉइंड बाय सीतारामन फ्रॉम मुंबई यस सीतारामन जी प्लीज आस्क अ क्वेश्चन
4: आई टेल यू आई हियर योर प्रोग्राम ऑक्सेसली बट वन थिंग आई फाइंड दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी व्हेन यू गिव सम व्यूज और संबोधित यू जी सर हमारा कुछ जिम्मेदारी है उनको जैसा मर्जे मरो मैं आपको
1: All right, I think the voice was not too clear, but anyway, let's move on.
2: और
1: या
2: एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के बाजारों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 9% की गिरावट के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सूचकांक बन गया। बाजार की गिरावट रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया गया और कारोबार 20 मिनट तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 2.1% और जापान का निकेई 1.9% तक गिरा। दूसरी ओर हांगकांग शेयर बाजार के हैंगसेंग इंडेक्स में लगभग 0.2% की तेजी दर्ज की गई। ताइवान का ताइएक्स और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स दोनों ही सकारात्मक रुझान के साथ स्थिर रहे। शशि जी, जो खास चीज हमारा ध्यान आकर्षित करती है, अगर दक्षिण कोरिया की हम बात करें जहां पर इतनी तेज गिरावट हमें देखने को मिली, और मोटे तौर पर और बाजारों में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति एशिया में हमें नहीं दिखाई दे रही।
3: दक्षिण कोरिया की बात का जिक्र करना यहाँ पे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि कुछ समय पहले दक्षिण कोरिया में एक या दो ऐसी कंपनियां थी जिनके शेयरों में काफी तेज उछाल आया था, और उसकी वजह से दक्षिण कोरिया के जो कहते हैं कि बाजार पूंजीकरण जो है वो काफी आगे हो गया था, और ये कहा गया कि दक्षिण कोरिया और ताइवान के शेयर बाजारों की स्थिति देखिए। लेकिन उस समय भी अगर हम लोग अगर उस बात को दोबारा याद करें तो उस समय हमने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया था कि दक्षिण कोरिया हो, ताइवान हो या ऐसे बाजार हो, इसमें एक या दो या तीन कंपनियां चार कंपनियां जो है वो बाजार को ऊंचा ले जा रही हैं, जबकि हमारे यहाँ जो बाजार में स्थिति है कि हम एक विविध बाजार हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और उन सभी क्षेत्रों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। तो अगर एक लंबे समय की प्रवृत्ति की बात करें तो वो दक्षिण कोरिया हो या फिर ताइवान की बात करें या ऐसे बाजारों की बात करें, शायद वहां देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारतीय बाजारों में हमें वो स्थिति देखने को मिलेगी, और वो बात आज काफी हद तक जो है वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है।
2: यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि आज सोमवार है, और हर एक सोमवार की तरह हम श्रोताओं के प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। श्रोताओं, आप हमसे फोन करके सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं इन नंबरों पर 2331444 और 2331-0481, और हमारा तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें।
1: शिशिर, नोइंग द मार्केट्स एट द मोमेंट, एज वी सेड इट रोज बाय 47 पॉइंट्स नाउ एंड स्टिल द मार्केट्स आर वोलेटाइल, नो थैंक्स टू द वॉर सिचुएशन एंड द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड द एनर्जी थ्रेट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, आफ्टर सीइंग ऑल दिस, इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इफ somebody wants to invest? What is your overall, how would you analyze the newcomers should wait and watch, or somebody with a high risk appetite should plunge into the stock market? How would you explain that?
3: So you have mentioned various factors starting from war to crude oil, but one more factor needs to be added, and that is the monsoon, which has much wider impact, because almost our aggregate economy is depending upon this thing. So what I mean to say that at this moment, when any kind of investor who is say a beginning, who is a beginner or newcomer in the market, it would be better if we just wait for some more time, because the volatility is too much, uncertainty is at high level, and even if he wants to invest, the mutual fund route is much better. And mutual fund, not just in the equity one, I would say go on the diversified one. Some part in equity, some part in debt, some part in the hybrid. That will give some more comfort. Entering into the market at this point of time, my advice would be it's not the good time.
1: I mean, don't put all your eggs in one basket, as they say. All right, we're now joined by Ramanathan from Chennai. Yes, sir, Ramanathan ji, please ask a question. Yeah.
5: Yes, good evening, Market
1: Mundra. Good evening, ji.
5: Yeah. See, I have two questions.
1: Yeah, sure.
5: One is, how is this dollar index calculated? And one more question is, with this inflation going up, can we see any interest rate hike, repo rate hikes?
3: The first question is about the dollar index. It is basically composition of six foreign currencies and any kind of changes in those six currencies impact the dollar index. And dollar index gives basically indication about that what is happening in the dollar, what kind of strength we are going to have. Coming to your second part of the second question, which is about the inflation and the interest rate. Basically, the 4% rate is something which is sometime it is giving an indication. Is it a time for rate hike? I think we will have to wait for at least two more months. So that is why the number which we have seen today is more than 4%. That means the median rate of targeted inflation rate has been breached, that 4% after January 2025. Now the expectation is that for the next 2 or 3 months, it could be in the range bound manner, but depends upon that how the monsoon covers entire nation and what is the swing situation. So we are expecting that in the second half of the fiscal, there may be a rate hike, but that will depends upon that what kind of inflation we see in the month of August or September.
2: और महाराष्ट्र से हमारे श्रोता के शुक्ला लाइन पे हैं. शुक्ला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं.
6: नमस्कार सभी को. मेरा क्वेश्चन है था कि क्या आज अभी भी गोल्ड का रेट इंग्लैंड में तय होता है इंडिया का भी, और गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है?
3: देखिए गोल्ड के रेट की जहां तक हम लोग बात करें, कॉमेक्स के आधार पर जो है वो रेट लिया जाता है. और रहा सवाल कि डॉलर और उसके मुकाबले में क्या, देखिए डॉलर मजबूत होता है तो उसका जो है वो नकारात्मक असर हमें सोने को में देखने को मिलता है, और डॉलर कमजोर होता है तो सोने के भाव में तेजी आती है.
1: और रवीना जॉइन बाय विशाल फ्रॉम दिल्ली. जी विशाल जी, सवाल पूछिए अपना.
7: मंत्री जी नमस्कार. जैसे मैं ये जानना चाहूंगा, 3-4 दिन से आईटी सेक्टर थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कोई आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं?
3: देखिए आईटी सेक्टर में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि बीते दिनों जो नतीजे आए हैं वो नतीजे अच्छे रहे हैं, एक उम्मीद दे रहे हैं कि शायद आने वाले दिन भी अच्छे रहेंगे. उनका जो कहते हैं ना कि आउटलुक भी जो वो बता रहे हैं उसमें थोड़ी स्थिति बेहतर है. और अगर आप याद करिए तो जो हमारी देश की एक बड़ी आईटी कंपनी उसके उनके चेयरमैन साहब ने ये भी बात कही थी कि जो भी हम एआई की बात करते हैं, एआई के लिए भी हमें एचआई और जो ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी. इसी तरीके से एनविद्या की अगर आप सीईओ की बात को याद करें तो उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था कि जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं उनकी जरूरत बनी रहेगी. तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके वजह से आप आईटी कंपनियों में तेजी देख रहे हैं. अब प्रश्न ये कि आने वाले समय में कैसी स्थिति रहेगी, देखिए ये सब कुछ निर्भर करता है कि ये लड़ाई का जो माहौल है उसमें किस तरीके से सुधार होता है. अगर वो सुधार होता है, मांग बढ़ेगी और उस मांग का फायदा जो है वो आईटी कंपनियों को देखने को मिलेगा. तो अभी थोड़ा सा ये जो 1-2 महीने है थोड़े से अभी अनिश्चितता के समय में है, उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो लड़ाई अभी शुरू दोबारा शुरू हुई है वो लंबा ना खींचे, तो इसका फायदा जो है हमें आईटी सेक्टर्स में भी देखने को मिल सकता है.
1: और वे जॉइंड बाय तरुण फ्रॉम गुरुग्राम. जी तरुण जी, सवाल पूछिए अपना. जी
8: गुड इवनिंग. माय क्वेश्चन इज व्हाट इज योर टेक ऑन द डिफेंस स्टॉक इवन द करंट सिचुएशन, and second part of the question is specifically with respect to Cochin Shipyard company's stock price.
3: Tarun, as a matter of policy, we cannot discuss name of any company. Any specific stock cannot be mentioned. But sector, you have asked about the defense sector. Of course, defense sector is doing well. And at this moment, I feel that defense sector will have a potential to give a better return.
1: All right, moving on. HCL Technologies today reported its financial results for the first quarter of the current financial year, that is from April to June. The company's revenue increased by 13.9% on an annual basis to 34,579. The company's revenue grew by 1.76% on sequential basis. The company's net profit rose by 3% to 4,624 crore rupees on quarterly basis. The country's third largest IT services company also announced an interim dividend of 12 rupees per equity share. And
2: और चलते हैं अगली खबर की ओर. इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान है. इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73.45 अरब अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब अमरीकी डॉलर हो गया। इस तरह इसमें 19% की वृद्धि दर्ज की गई। शिशिर, बहुत ही अच्छी खबर है जिस तरह से हमारा निर्यात बढ़ा है।
3: बिल्कुल, देखिए निर्यात का बढ़ना अच्छी खबर है, लेकिन एक चीज और भी देखिए कि आयात भी बढ़ा है और जिसका असर जो है वो हमारे व्यापार घाटे पर देखने को मिला है। लेकिन अभी के समय में हमें आयात में ये भी देखना चाहिए कि आयात किस चीज का बढ़ा है। अगर कच्चे माल, मशीन, इन सब चीजों का आयात बढ़ रहा है तो वो बुरी खबर नहीं है, बल्कि वो हमारे निर्यात को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आयात बढ़ने को लेकर के जब कभी भी हम चर्चा करें तो हमें ये भी देखना चाहिए कि किन चीजों का आयात बढ़ा है। और यदि आयात में इस तरह के सामान हमें देखने को मिलते हैं तो उसको लेकर के हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आने वाले कुछ समय में उसका असर एक सकारात्मक देखने
2: जी, जैसा आपने कहा श्री जी, अलग से हमारे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन वस्तुओं में और सेवाओं में दोनों की दृष्टि से अगर हम देखें तो आयात में भी 26% की वृद्धि हुई।
1: एंड गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क बाय एक्सपेंडिंग इट्स बास्केट बाय आउटसोर्सिंग फ्रॉम आई मीन बोथ इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट।
3: सर्टेनली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग दैट इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर कैपिटल goods in import, more and more API imports are there, that is good for us. So import is not a bad word.
1: Yes.
3: The thing is that what we are importing.
1: Right.
2: और दिल्ली से हमारे श्रोता रमेश लाइन पे है। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं।
9: सर, मेरा ना क्वेश्चन नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट के बारे में है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग स्कीम NSS।
2: जी
9: सर, मैंने ना 91 में सर जी 45,000 सर जी पोस्ट ऑफिस में लगाए थे, तो सर अब वो पोस्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि अपने पैसे निकाल लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कीम बंद कर दी है। तो सर मेरा सर से क्वेश्चन ये हैगा कि सर जब मैं पैसा निकालूँ क्या ये टैक्सेबल सर होगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा सर? और सर ये बजट में ना सर गवर्नमेंट डिक्लेयर किया था, किसी ने मुझे बताया कि ये गवर्नमेंट बोला है आप निकालेंगे तो टैक्स नहीं लगेगा इसके ऊपर। सर मैं सर की ओपिनियन जानना चाहता हूँ सर। मैं
3: देखिए नेशनल सेविंग स्कीम, अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या जिसको हम लोग NSC के नाम से जानते हैं, वो अब उस रूप में है। आप अगर पैसा निकालते हैं वो टैक्स ऑलरेडी कट गया है। इसका जो सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ETE, यानी कि जब आप पैसा लगाते हैं उस समय आपको एक निश्चित रकम तक कर में छूट मिलती है, उसके बाद जो उस पे ब्याज जोड़ता जाता है वहां पर टैक्स कटता है। और जब आप पैसा निकालते हैं तो ऑलरेडी चूंकि टैक्स कट चुका है तो वो आपके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड होगा, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है।
1: ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, सवाल पूछिए।
10: नमस्ते मार्केट मेंटालिटी। सर मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है, ना मार्केट से है ना फाइनेंस से है। मेरा सवाल सर ये कि हमारे यहाँ बहुत सारा विकास का काम हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश में भोपाल में सीवर लाइन डल रही है, सड़कें बन रही है, बट द क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट अप टू द मार्क। ये बिकॉज ऑफ यू नो जो भी रीजन हो, L1 L2 के चक्कर में सबसे सस्ते को लिया जाता है और काम और सस्ता होता है, तो इसका क्या, इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है?
1: Well, I think we can't take that question because we are limiting ourselves to anything which is related to the financial aspect of the country or the markets, right? So this is beyond our syllabus to be honest and to be precise. All right, let's move on with more news. India's retail inflation accelerated to 4.38% year on year in June, breaching the Reserve Bank of India's midpoint target. The June inflation reading was moderately higher than the 3.93% recorded in May. Retail inflation continued to rise for the sixth consecutive month under the new Consumer Price Index CPI series. According to data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, inflation in rural areas edged up to 4.74%, while in urban regions it rose to 3.92%. The food inflation rate based on the All India Consumer Food Price Index stood at 5.32% last month, up from 4.78% in the preceding month. According to the data, the increase in inflation in the previous month was mainly attributed to rising prices in personal care, social protection, restaurants and accommodation services, food and beverages and intoxicants. Your comment on this?
3: See, one factor is that there is a complete pass-through of petrol diesel price hike, and that is being reflected in the inflation number. The second is, of course, precious metal, whether we talk about silver jewelry or whether we talk about gold, diamond and platinum jewelry. In fact, silver jewelry, the inflation rate is 133%, which is not a small number.
1: Absolutely.
3: And the good thing is that the vegetable prices, I mean, especially when we talk about onion and potato, they are in the disinflation. That means they are in the negative territory. But one of the ingredient of our thali, which is ginger, adrak.
1: Yes, yes.
3: That is very costly. Jeera, that's a cummins, that is also very costly. So some of the food items are costly, some of the food products are costly. So we have the pass-through, then we have the precious metal and some of the food items. So combination of all those three have resulted in the 4.3% of the inflation for the month of June.
1: And we know that there is likely to be less monsoon, you know, as is being predicted
3: is
1: by the
3: real,
1: IMD.
3: That's a bit of a worry. Yeah, that
1: right?
3: is a concern, and that is what we are expecting, that the inflation will be over 4% in the coming months also.
2: Aur hamare shrota Deepak humse jud chuke hain. Deepak ji namaskar, bataiye kya पूछना चाहते
11: हैं? नमस्कार सर।
3: नमस्कार
2: जी, सवाल पूछो
11: सर। ये जैसे मार्केट में मैं ना पहले इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता था, निफ्टी और इन पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, तो ये गैप अप और गैप डाउन को जो मैकेनिज्म है, ये मेरी समझ से बाहर है कि मतलब एक ही नाइट में सेंटीमेंट कैसे चेंज होता है। सुबह सुबह गैप अप होके, जैसे आज ही हुआ था गैप डाउन होकर, शाम तक गैप मतलब फिल हो गया था, तो इतनी जल्दी सेंटीमेंट कैसे चेंज होते हैं सर?
3: तकनीक में समय बहुत कम लगता है। तकनीक जो है वो सूचनाओं को बहुत जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता है। तो जब आप कहते हैं गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो जाहिर सी बात है कि रात की घटनाएं, सुबह की घटनाएं असर करती हैं, लेकिन दोपहर के बाद अगर परिस्थितियां, मान लीजिए थोड़ी सी सकारात्मक खबरें आती हैं, कुछ क्षेत्र में अच्छी खबरें आती हैं, सरकार की तरफ से अच्छी खबरें आती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका बदलाव देखने को मिलता है। तो इसका सीधा सीधा जवाब मैं इतना ही कहूंगा कि तकनीक की वजह से सूचनाओं का जो प्रवाह है, जिसमें तेजी आई है, उससे बाजार में भी जो है वो पल दो पल, जिसको कहते हैं, बदलाव देखने को मिलता है।
1: राइट। Alright, let's talk about oil prices now. Well, global crude oil prices rose today after renewed military strikes between the United States and Iran reignited concerns over energy shipments through the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 3.4% up at $78.59 per barrel. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% up at $73.89 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 1% down at 1,42,610 rupees per 10 grams, while silver was trading 1.3% lower at 2,20,140 rupees per kilogram a short while ago.
2: Aur multi-commodity exchange mein August anubandh wala sona 1% ki giravat ke saath 1,42,066 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध वाली चांदी 1.3% की गिरावट के साथ 2,19,823 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। शशि जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोने के मूल्य के बारे में?
3: देखिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि महंगाई दर में चांदी की महंगाई दर और सोने की महंगाई दर कितनी है, लेकिन हकीकत यह है कि दैनिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर सोने और चांदी दोनों में जो है गिरावट देख रहे हैं, और एक बहुत ही ऊंचे स्तर से गिरावट आई है क्योंकि डॉलर लगातार मजबूत हुआ है। तो वहां पर जो इतनी मजबूती आएगी, उसका असर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यह भी है कि जो वैश्विक अनिश्चितता का दौर था, उसकी में कहा जाता था कि सोने के भाव बढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा रहा है। सोने में उस तरीके की स्थिति देखने को नहीं मिली है। उसकी एक वजह यह भी है कि डॉलर की स्थिति अगर अलग रही है तो उसका असर आपके सोने पर पड़ा है।
2: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शशि जी से कार्यक्रम में भाग लेने, प्रमुख खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नाउ द हेडलाइंस अगेन, थैंक यू शशि जी। वेल, इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, सेंसेक्स एजेस अप 47 पॉइंट्स, निफ्टी क्लोजेस flat. India's retail inflation rises to 4.38% in June this year, and global crude oil prices rise. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. So from all of us here, goodbye.
2: Namaskar.
12: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
13: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

1974 में आई फिल्म रजनीगंधा का आपने ये गीत सुना, सलील चौधरी का संगीत और मुकेश की आवाज, और इस गीत को लिखा योगेश ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत और मैं हूं आपके साथ ऋतिका।

0: दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। राखी आ चुकी है निशिगंधा कार्यक्रम लेकर। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है।

0: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मूज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मूज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 6 अभी लापता हैं। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी उपस्थित रहेंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना तथा शोध, नवाचार और चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस राघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with U.S. Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had a productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the president said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the vice president prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. The decomposed bodies of the 9 fishermen who lost their lives due to the capsizing of a boat off the coast of West Bengal in Bay of Bengal have been kept at the Katapukur Morgue in South 24 Parganas district. 15 fishermen went off for fishing from the Sankarpur Sea Harbour on 2nd of July on FB Ma Kali trawler. After 5th July, connection was lost with the fishing trawler. A joint team of Coast Guard, Navy, state agencies found the capsized trawler on 12th July afternoon in the Bay of Bengal. 9 decomposed bodies have been recovered from the cabin of the ill-fated trawler. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident off Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, yesterday inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where projects worth 4,850 crore rupees were launched yesterday, which includes inauguration of the expressway and 4-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with laying of the foundation stone of a flyover in Lucknow. In cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur yesterday recorded a historic win in one of women's tests against host England at the Lords. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

थक गए हैं? अरे जनाब, अभी तो सोमवार बीता है, पूरा हफ्ता बाकी है। जोश बनाए रखिए, मुस्कान सजाए रखिए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो सफर का आखिर तक साथ निभाते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़, काम का दबाव और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां चेहरे की मुस्कान कहीं छिपा देती हैं। लेकिन यकीन मानिए, मुस्कुराहट से खूबसूरत कोई गहना नहीं होता। तो अगर आज कोई आपसे कह दे मुस्कुराइए ना, तो बुरा मत मानिए, शायद वो आपकी मुस्कान की अहमियत जानता हो। यूं ही किसी शायर ने नहीं कहा कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर दिल को अपना बना लेता है।

0: गोलमाल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत बद्ध किया आरडी बर्मन ने। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो कभी ठहरती नहीं, हर पल आता है, अपनी कोई याद, कोई एहसास, कोई मुस्कान दे जाता है और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। इसीलिए जो लम्हा इस वक्त आपकी मुट्ठी में है उसे खुलकर जी लीजिए। अपनों के साथ बिताया गया एक छोटा सा पल भी उम्र भर की याद बन सकता है।
1: उठे सबके कंधे

वक्त हुआ है 12:34 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है

जुर्माना फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर दिल में उत्साह हो और होठों पर कोई प्यारा सा गीत हो तो सफर भी आसान लगने लगता है। संगीत की यही खूबी है, ये थके हुए कदमों में भी नई ऊर्जा भर देता है, मुस्कुराने की वजह दे देता है और महफिल का रंग ही बदल देता है।

बिन फेरे हम तेरे फिल्म का गाना आपने सुना रफी और उषा खन्ना की आवाज में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया उषा खन्ना ने। दोस्ती का रिश्ता उन अनमोल रिश्तों में से एक है जिसे न किसी नाम की जरूरत होती है और ना किसी शर्त की, बस थोड़ा सा अपनापन, थोड़ा सा विश्वास और साथ निभाने का वादा। यही इसे उम्र भर के लिए खास बना देता है। जिंदगी के सफर में ऐसे दोस्त मिल जाएं जो हर खुशी में मुस्कुराएं और हर मुश्किल में साथ खड़े रहें तो राहें आसान लगने लगती हैं।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, मगर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी यादें वक्त के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। वाकई जब कोई जुदा होता है तो दिल पर यादों के तीर चलते हैं। हर धड़कन जैसे किसी पुराने लम्हे को पुकारती है। हर खामोशी किसी अधूरी बात का एहसास दिलाती है। शायद इसी एहसास का नाम मोहब्बत भी है, जो जुदाई के बाद भी दिल से कभी जुदा नहीं होती।

बेताब फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 18 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हों। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब

0: $98 करोड़ हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात $88.76 करोड़ होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीरों को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 6 अब भी लापता हैं। देश भर में वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने 33 तस्करों को गिरफ्तार किया है। DRI ने इस अभियान में 440 संरक्षित और लुप्त प्राय वन्य जीवों को बचाया और करीब 15 किलोग्राम हाथी दांत तथा उससे बनी वस्तुएं जब्त की हैं। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 186 रन पर सिमट गई। क्रांति गौड को 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jameson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting First Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods, and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Decomposed bodies of the 9 fishermen who lost their lives due to the capsizing of a boat off the coast of West Bengal in the Bay of Bengal have been kept at Katapukur Morgue in South 24 Parganas district. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indian tourists who were killed in a speedboat accident off Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official ex-account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. Defence Minister Rajnath Singh and Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari, along with Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, yesterday inaugurated the Lucknow-Kanpur Expressway. Before the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway, all these leaders inspected the expressway in Unnao. Later, they came back by the same expressway and participated in the function at Sainik School in Lucknow, where projects worth 4,850 crore rupees were launched yesterday, which includes inauguration of the expressway and four-lane construction of a part of Lucknow-Hardoi Highway, along with laying of the foundation stone of a flyover in Lucknow. A Delhi court yesterday convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional sessions judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted 5 of them. The court found Tahir Hussain guilty under the charges of promoting enmity, rioting, assault, criminal force and murder. In cricket, Indian team led by Harmanpreet Kaur yesterday recorded a historic win in one of women's tests against host England at the Lords. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

राजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने कुछ चेहरे तस्वीरों में बहुत खूबसूरत लगते हैं लेकिन कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई तस्वीर कोई आईना या चंद लफ्ज पूरी तरह बयान नहीं कर पाते उनकी मुस्कान की मासूमियत उनकी नजरों की गहराई और उनकी मौजूदगी की रौनक सिर्फ महसूस की जा सकती है

आरती फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई मिसाल ही नहीं मिलती, फूलों की नजाकत, चांद की चांदनी, सुबह की पहली किरण या बहार की ताजगी, सब कुछ कम पड़ जाता है जब दिल किसी की अदा, मासूमियत और हुस्न का कायल हो जाए, तो अल्फाज भी ठहर से जाते हैं।

दिल दिया दर्द लिया फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने मोहब्बत हर बार मंजिल तक पहुंचा दे ऐसा जरूरी नहीं कभी यही इस एहसास इंसान को इतनी गहरी चोट दे जाता है कि जिन लफ्जों से कभी जिंदगी बसती थी वही लफ्ज अजनबी लगने लगते हैं दिल टूटता है तो शिकायत किसी एक शख्स से नहीं रहती बल्कि कभी-कभी मोहब्बत का नाम भी दर्द का दूसरा नाम बन जाता है

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है

गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में. भरत व्यास ने इसे लिखा और संगीत दिया वसंत देसाई ने. कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं. दर्द जब शब्दों का सहारा लेता है तो कुछ इस तरह की ही धुनें बनती हैं जो अमर हो जाती हैं. एक टूटा हुआ दिल, बिखरे हुए अरमान और बिछड़ने की कसक.

असली नकली फिल्म का गाना आपने सुना लता और रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। प्रेम का सबसे सुंदर रूप शायद वही है जहां शिकायतें भी हों, रूठना मनाना भी हो, लेकिन साथ निभाने का वादा सबसे बड़ा हो।

काला पानी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में. मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने. इश्क जब अपनी हदें पार कर जाए तो होश और बेखुदी का फर्क मिट जाता है. फिर दिल बस उसी का नाम लेता है जिसकी याद हर सांस में बसी हो.

आहा फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। इंतजार का हर पल उम्मीद से भरा होता है। जब दिल किसी अपने को पुकारता है तो उसकी सदा में दर्द भी होता है और मिलने की आस भी। आंसू बहते बहते जब गम भी थक जाए तब दिल से यही गुजारिश होती है, आ जा रे अब मेरा दिल पुकारा।

प्यासा फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने कभी-कभी मोहब्बत को इजहार के लिए बड़े-बड़े अल्फाज नहीं चाहिए होते बस एक नजर एक मुस्कान या दो अनकहे शब्द और दिल अपनी कहानी खुद लिखने लगता है

उड़न खटोला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद अली ने। मोहब्बत का सफर जितना हसीन होता है उतना ही नाजुक भी। यहाँ हर मोड़ पर उम्मीदें हैं, सपने हैं, तो कभी कभी इम्तिहान भी। इसलिए इस राह पर कदम बढ़ाइए तो दिल संभाल कर, क्योंकि एक छोटी सी आहट भी उम्र भर की याद बन सकती है।

वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 40 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म से आपने गाना सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा और निराधार तथा भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने बताया कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने आगे बताया कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे

0: कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोस कोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। इनमें सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और मैला ढोने वाले शामिल हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने निजी विद्यालयों की फीस पर नियंत्रण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके लागू होने से राज्य के सभी निजी विद्यालयों की फीस पर सख्त निगरानी होगी। नए प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी निजी विद्यालय सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना एक शैक्षणिक वर्ष में वार्षिक फीस और अन्य शुल्क में 5% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said he had a fantastic meeting with the US trade representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Minister of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewellery, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said,

हुआ है 2:11 और ठीक 2 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ संगीत रातों को सुरमई बना देता है और सुरमई रातें दिल के एहसासों को और भी गहरा कर देती हैं

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। जी हाँ, ये रातें आते जाते कहती हैं ढेर सारी कहानियां। चांद उसकी जुबान बन जाता है और सितारे उसके अल्फाज। बस सुनने वाला दिल चाहिए, हर खामोशी में एक दास्तान मिल जाती है।

घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने कभी कभी किसी की आंखों में ऐसे राज छिपे होते हैं जो लफ्जों से बयान नहीं हो पाते बस एक नजर दिल तक उतर जाती है और एहसासों की खुशबू देर तक साथ रहती है

0: पिया का घर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:29 और ठीक 12 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

दो रास्ते फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मेरे नसीब में है दोस्त तेरा प्यार शायद कभी लिखा ही नहीं था मगर इतना जरूर लिखा था कि तेरा साथ तेरी यादें और तेरा एहसास उम्र भर मेरे दिल के किसी कोने में महफूज रहेंगे कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते लेकिन उनकी खूबसूरती कभी कम नहीं होती

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका संगीत दिया और इसे लिखा आनंद बख्शी ने जिंदगी के सफर में कुछ मकाम ऐसे भी आते हैं जो एक बार गुजर जाएं तो फिर कभी लौट कर नहीं आते वक्त आगे बढ़ जाता है लेकिन उन लम्हों की महक उसकी कसक और उनकी यादें उम्र भर दिल की किसी कोने में जिंदा रहती हैं

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से आपने ये गाना सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने शायद यही सच्चे रिश्तों की पहचान है जहां शिकायतें भी मोहब्बत से की जाती हैं और खामोशियां भी वफादारी निभाती हैं

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 17 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही पंकज गोस्वामी के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

अर्थ फिल्म से आपने नज़्म सुनी जगजीत सिंह की आवाज में इसे कैफी आज़मी ने लिखा और संगीत दिया कुलदीप सिंह ने

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतरिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान के वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकुनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकीना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। विजेताओं और उनके कार्यों का प्रदर्शन वेव्स 2027 के दौरान आयोजित क्रिएटोस फेयर में किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र

से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्या कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, आयुष शेट्टी और पीवी सिंधु जैसे भारतीय खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेते नजर आएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर टाइम हुआ है रात के 3:10 और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही और मैं हूं पंकज आपके साथ और दो गानों के बाद मैं आपसे मिलता हूं। अभी के लिए शुरुआत करते हैं वारिस मूवी के इस गाने के साथ।

मूवी का नाम प्यासी आंखें किशोरदा और आशा जी की रोमांटिक आवाज में गाना था, उषा खन्ना का म्यूजिक और इंदिवर के बोलते। 14 जुलाई की इस आधी रात में मेरे यानी पंकज के साथ हमराही शो सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, और इस पूरे घंटे हम सुनेंगे पुराने डुएट्स गाने। इन गानों को सुनकर रहना, मन की थकान मिट जाती है, क्योंकि मन खुश तो सब खुश। तो इन दो गानों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अभी के लिए सुनिए हीरो फिल्म का गाना मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे इन गानों के बाद।

किशोर कुमार और आशा जी की आपके लिए गाते हुए फ्रॉम द मूवी ये वादा रहा आर डी बर्मन का म्यूजिक और गुलशन बावरा के बोल थे। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ, शो का नाम है हमराही। और पता है दिल के सुकून को ना हर हाल में बचाए रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये खो जाए तो दुनिया की हर महफिल बेरंग लगती है। और प्यार और रिश्ते नातों में तो ये बात और भी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि रिश्ते बिगड़ने पर ना सुकून खो जाता है। मैं हूं पंकज आपके साथ। और एक चीज पता है, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि पसंद का रिश्ता अगर हमारी जिंदगी में है तो जिंदगी जो है ना खिली हुई चांदनी जैसा हो जाता है। यकीन मानिए, एक पसंदीदा इंसान आपकी जिंदगी में है ना तो वो हजारों लोगों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। वो इतनी खुशी आपको दे देगा कि फिर ऐसा लगे यार जब इतना एक बंदा मेरे पास है तो मुझे हजारों की क्या जरूरत है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है तो सच में बहुत अच्छा नसीब है आपका।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

एक बात है ना, आप अच्छे से मान लीजिए कि जिंदगी जो है एक प्यारे से रिश्ते के बिना चलानी बहुत मुश्किल है, इसलिए रिश्ते कमाइए। पैसा तो खैर हम सब कमा ही रहे हैं, लेकिन रिश्ते अगर अच्छे हो, एक ही रिश्ता अगर अच्छा हो, तो वो सारी खुशियों की वजह

बन सकता है। बाकी आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अब हमराही शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है। सुबह 4 बजे से हिंदी और इंग्लिश में आप समाचार सुनेंगे और फिर सुबह 4:10 पर अगला शो होगा अरुणिमा। मैं पंकज आपके साथ फिर से उसी शो में मिलूंगा। तो अभी इन गानों का मजा लेते रहिए और गानों की बीट्स पर झूमते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई। भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। वे कजाकिस्तान के बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से दो रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रोसकोस्मोस के सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेंगे। अनिल मेनन के साथ रूस के अंतरिक्ष यात्री प्योत्र दुब्रोव और अन्ना किकिना भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 75वें अभियान का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष यात्री बुधवार तड़के करीब 1:25 पर अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2027 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 2 के लिए उद्योग आधारित चुनौतियों के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का उद्देश्य मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रचनात्मक प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें प्रोत्साहित और प्रशिक्षित करना है। मंत्रालय ने बताया कि प्रस्ताव जमा करने और चुनौतियों के चयन के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े इच्छुक संस्थान 31 जुलाई तक wavesbazaar.com पोर्टल पर अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज तीसरे नमस्ते दिवस का आयोजन करेगा। ये मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के शुभारंभ के 3 पूरे होने का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के रविंद्र सदन में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि नमस्ते दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वच्छता की रक्षा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में आज से 3 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगी। इसका उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के बीच शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और ओडिशा में बिजली के साथ तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आर एस रघु Commerce and Industry Minister Piyush Goyal yesterday dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said, He had a fantastic meeting with the US Trade Representative Jamieson Greer in New Delhi last month in this regard. Mr. Goyal said both sides reaffirmed their commitment to an agreement that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers in both the countries. He asserted that their teams remain fully engaged in achieving the objective. Meanwhile, Mr. Piyush Goyal yesterday began his official engagements in Spain by meeting first Vice President of the Government of Spain and Ministry of Economy, Trade and Business, Carlos Cuerpo Caballero. In a social media post, Mr. Goyal said that they had productive discussions on strengthening the India-Spain economic partnership through greater trade, investment and technology collaboration. India's total exports during April to June this year is estimated at over $232 billion, registering a positive growth of 11.37% as compared to the same period last year. Commerce and Industry Ministry said that the total exports for June this year is estimated at $73.45 billion, registering a positive growth of 9.48% as compared to the same month last year. The major drivers of merchandise exports growth in June include gems and jewelry, engineering goods, organic and inorganic chemicals, electronic goods and rice. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives following a boat capsizing in West Bengal's South 24 Parganas district. In a social media post, the President said her thoughts and prayers are with the affected families. Expressing condolences to the bereaved families, the Vice President prayed for the speedy recovery of those injured. In a social media post, Mr. Modi said his thoughts are with the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. The decomposed bodies of the 9 fishermen who lost their lives due to the capsizing of a boat off the coast of West Bengal in the Bay of Bengal have been kept at Katapukur Morgue in South 24 Parganas district. 6 persons are still missing. The mortal remains of the 15 Indians who were killed in the speedboat accident of Vietnam's Phu Quoc Island have been brought back home. According to the official X account of the Embassy of India, Hanoi, the mortal remains departed from Ho Chi Minh City by Vietnam Airlines flight VN979 and arrived in Mumbai. In a tragic incident on Friday, a speedboat carrying 32 Indian tourists and 4 local crew members capsized off Phu Quoc Island, leaving 15 tourists dead. India Meteorological Department IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over Bihar and Odisha till today. The Weather Department said that isolated heavy rainfall is also expected over Arunachal Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, West Bengal, Sikkim, Assam and Meghalaya today. According to IMD, Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Sikkim, Karnataka and Odisha are expected to witness thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds. Delhi High Court convicted former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others for the killing of Intelligence Bureau officer Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots. Additional sessions judge Praveen Singh was hearing the case against a total of 11 accused, including Hussain, and convicted 5 of them. Indian boxers remained a strong force at the Asia Under-19 and Under-23 championships, with 16 of them advancing to the finals across men's and women's categories in Jakarta. In the Under-19 women's category, 8 boxers reached finals yesterday, and that is the end of this news bulletin.

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम। अरुण मैम और मैं पंकज हूँ आपके साथ। तो इन दो गानों के बाद आपसे मैं मिलता हूँ और अभी शुरुआत करते हैं इस गाने से। जहरीला इंसान फिल्म का नाम है और किशोर कुमार की आवाज़ है।

और नितिन मुकेश की आवाज में मेरी जंग फिल्म से ये गाना था। इस मूवी के लिए नूतन जी को और अमरीश पुरी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और बिल्कुल सही मिला था। अरुणिमा शो में मैं हूं पंकज आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के फिल्म गोल्ड चैनल पर। जिंदगी एक जंग तो है ही, लेकिन इसे धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी के बलबूते पर जीता जा सकता है, क्योंकि सत्य ही हमेशा जीतता है। 14 जुलाई मंगलवार की छोटी सी सुबह हो चुकी है और इन दो गाने के बाद मैं आपसे फिर से मिलूंगा और कहीं नहीं जा रहा हूं, बस यहीं स्टूडियो की कुर्सी पे बैठकर आपके साथ गाने सुन रहा हूं। आप उधर गाने सुनिए, मैं इधर गाने सुनता हूं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

गाना जो है वो एक तरह से आई ओपनर का काम करता है, क्योंकि हमें मिले हुए पदार्थों का जो है अहंकार हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि बस ये चीज जो है हमारे पास है और हम ही इसके मालिक हैं। लेकिन फिर उसके बाद याद आता है कि ये सब तो एक दिन यहीं रह जाएगा। इंसान का शरीर जो है वो पंच तत्व में जाता है और रह जाती हैं सिर्फ यादें। हमारे कर्म ऐसे हों कि कोई हमें याद करे ना तो प्यार से याद करे और हमारे बारे में अच्छा बोले, कोई आपके जाने पर दुखी ना हो, मतलब कि कोई खुश ना हो कि नहीं भाई वो अच्छा हुआ वो चले गए। नहीं नहीं, होना तो ये चाहिए कि लोग आपके बारे में अच्छा बोलें और ये कहें कि हाँ दुख तो हुआ वो गए हैं लेकिन जहाँ भी हो वो खुश हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अरुणिमा शो में मैं हूँ पंकज आपके साथ। जिंदगी में खुशियाँ मिले ना तो उन्हें ज़रूर बांटिए, क्योंकि इससे खुशियाँ

4:45 कर 41 मिनट हो चुके हैं और गाइड मूवी का ये गाना लता जी की आवाज में था, एस डी बर्मन का संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। ये मूवी हमने देखी ही है, लेकिन बार बार इस फिल्म को देखने पर पता है जीवन के कई सूत्र हमें पता चलते हैं। एक सूत्र तो यही है कि जिंदगी में सुख और दुख जो है वो भोगने ही पड़ते हैं और चाहे जो हो। लेकिन न्यूज में कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं वो दुखों से हार जाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। ये बहुत गलत बात है। मैंने शो की शुरुआत में भी कहा था कि जिंदगी की जंग को जो है हम धैर्य, मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से जीत सकते हैं। बुरा समय अच्छा समय अपने पीछे छुपाकर लाता ही है और वो जो बुरा समय होता है वो एक तरह से हमारी परीक्षा होती है। चुपचाप सहकर परेशानियों को पार पाने दीजिए और फिर खुशियों का सूरज सामने चमकता दिखेगा। अरुणिमा सुनते रहिए, मैं पंकज सिर्फ आपके लिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

ये जुलाई बारिश का मौसम है और घर से अगर आप बाहर जाएं तो छोटा छाता बैग में हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि धीरे धीरे सुबह जो है वो तेज हो रही है। और अभी मैंने स्टूडियो की खिड़की से देखा तो मुझे सामने जो सड़कें हैं ना वो गीली गीली नजर आई है। इससे मैंने अंदाजा लगाया कि बारिश हुई है, और वैसे भी छोटी छोटी बूंदों का मुझे कुछ दिख रहा है तो वहां से मुझे लग रहा है कि बारिश अभी दिल्ली में हुई है। खैर, अगले शो भोर सुहानी में मैं पंकज आपसे मिलूंगा, और अभी के लिए अरुणिमा शो के ये बचे हुए गाने सुनिए। फिर सुबह 5 बजे आप हिंदी और अंग्रेजी में न्यूज सुनेंगे, और उसके बाद फिर 5:10 पर मैं पंकज भोर सुहानी में आपके लिए और गाने लेकर आऊंगा। तो आप ऐसे गाने सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, गानों का मजा लेते रहिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ अमरीकी डॉलर रहने का आकलन है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति, सुरक्षा और समता मूलक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत का शांति दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अब तक संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 शांति मिशनों में करीब 3,00,000 शांति सैनिक भेज चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 10 मिशनों में 4,300 से अधिक भारतीय कर्मी तैनात हैं। उन्होंने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज जल डमरू मध्य से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान के जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करेगा। साथ ही ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीका के फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि अमरीकी सेना को मदद देने वाले किसी भी देश को युद्ध में शामिल माना जाएगा। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर लागू करने की घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 15 भारतीय पर्यटकों के शव स्वदेश लाए गए हैं। इन भारतीय पर्यटकों की वियतनाम के फुकवॉक द्वीप पर स्पीड बोट की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई पहुंचे। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने वाली एक नाव बंगाल की खाड़ी में पलट गई। इसमें 9 मछुआरों की मौत हो गई है और 6 अन्य अभी भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। इसके

सुबह के 5:10 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है मेरे यानी पंकज के साथ भोर सुहानी शो। दो गानों के बाद आपसे मिलता हूं और रामलखन फिल्म के इस गाने के साथ इस शो की शुरुआत करते हैं।

बीत गया वो एरा जब ऐसे गाने बनते थे सुनकर ही मतलब मजा आ जाता है। बेटा फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज थी, आनंद मिलिंद का म्यूजिक और समीर के लिरिक्स थे। और बहुत ही हसीन सुबह हो गई है, मतलब इससे भी ज्यादा तो अच्छा मौसम हो गया। थोड़ी सी बारिश हो गई है दिल्ली में और मौसम तो सच में इतना प्यारा हो गया है, मतलब स्टूडियो की खिड़की से देख रहा हूँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। 14 जुलाई का आज मंगलवार है और मंदिरों में आज स्पेशली भगवान के दर्शनों की भीड़ होती है और दिल्ली में भी बहुत फेमस टेंपल्स हैं और ट्यूसडे को भी मतलब काफ़ी भीड़ लगती है मंदिरों में, यानी पूरी रौनक। हमारे देश की राजधानी दिल्ली की जो है वो बात सबसे अलग है, यानी फुल ऑफ लाइफ। अब ये शहर है ही ऐसा। वैसे हाँ बारिश हो चुकी है थोड़ी सी और बारिश का मौसम है और बाकी बहुत अच्छा मौसम है और आज मंगलवार है, बहुत सारे लोगों को अपने ऑफिस के लिए दुकान के लिए निकलना होगा। तो आप बाहर निकलें तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि अम्ब्रेला आपके पास जरूर हो ताकि अगर बीच में बारिश आ जाए तो आप भीगे नहीं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर मैं पंकज हूं आपके साथ। शो का नाम है भोर सुहानी। सुबह के 5:23 इन दो गाने के बाद आपसे फिर मिलता हूं।